0: पन्पनि विसंतर गावे रज तरम द्वारे
1: गावे चित पतलक चौने लिक लिक तर जस गावे चित पतलक चौने लिक लिक तरम विचारे
0: गावे ईश्वर वर्म देवी सांसदा सवारे
1: गावे इंदन दासन बेटे देवतिया तनाले
0: गावे सिद्ध समाधि अंदर गावे सद विचारे
1: गावन जति सति संतो की गावे भी कराए
0: गावन परन परन रखी साजू जू वेदन ले
1: गावे मोहनी अमन मोहन सुगम छपायाले
0: गावे रतानु परी तेरे असत्य रत्नाले
1: गावे ज्योत महाबल सूर गावे खान विचारे
0: गावे कन्दमल दरबर वन्ना कर कर रखे तारे
1: सही तुरन गावे चोट पावन रते तेरे भगत रसाले
0: उर के ते गावन से मिचि न आवन नानक या विचारे
1: सोई सोई सदा सच साहेब सच सच नाए
0: हेवी होसी जाए रजासी रचन चिन रजाई
1: रंगी रंगी पाटी कर कर जैसी माया जन उपाय
0: कर कर वे के किताब न जीव तिस की वरियाई
1: ज्योत पावे सोई करसी हुक्म न करना जाए
0: सो पति साव सहा पति साहेब नानक न रजाए
1: मंदा संतोक शर्म पात चोले ध्यान की करे पपूता
0: किंता काल क्वारी काया जुगतंत प्रतीत
1: आई पंथी सगज माते मंजीते जगजीत
0: आदेत से आदेत
1: आद अनिल अनार अनाह जग जग एक वेस
0: भुगत किया गया वंदर कर कर बाजे नाद
1: आप नाथ नाथी सब जाकी रिल सिर्फ सा अवर सात
0: संजोग भी जोग दुखा चलावे लेके आवे बाग
1: आदेश से आदेश
0: आद नील अनाद नाहा चुचुए गोवेस
1: एक माई चिकतवे आए तिन चले परवाना
0: एक संसारी एक बंदारी एक लाहे दीवन
1: जीव से पावे तवे

0: आसन लोए लोए पंतार
1: जोत्स पावे सोए कवर
0: कर कर वे के सृजनहार
1: नानक सच्चे की सच्ची कर
0: आदेश से आदेश
1: आदि नील नाद नहा जुजुए को बेस
0: एक दूजी पोल कहुए लक होवे लकवीस
1: लख लखेरा आखिए एक नन जगदीश
0: एतरे पट पवड़िया चिड़िए हो आखीस
1: सुंगला कश की किता आये रिस
0: नानक नररी पाया कोटे कोटे टीस
1: अकन जोर जुपे न जोर
0: जो न मंगन दे न जोर
1: जो न जीवन मन न जोर
0: जो न राजा मल मनसोर
1: जो न सुति की अंबि